0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कन दिवे ही राज्य क्या डूं राज्य के कोमे हिसाबे गहुरे के बस एवज आगे देखो मकानुला पीएसएम के चरल तक फोन उंगड़ो हाला बलालम फासे हो गोते
3: पीएसएम एआ
4: दिवे राज्य के आड़ा दीनु के आड़ो अधि दिवे ही एफएम बस आड़ो हाल वेने
2: टीवीएम यस टीवी अधि पीएसएम न्यूज़ बलालम
3: पीएसएम एआ
4: आईओएस अधि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करे वेने
2: पीएसएम एआ
4: आवाह फोन डाउनलोड करवा
5: गड़ी मिंदुरु बारजही

0: ফাহে ফৈবারুতাবি বয়কু এউরেঙ্গে ফাহুং আউয়ে এউরেম মিদুনিয়েগে মুদলুগা হিফতে আদি এউরেম বুনেতে থিমম্মে নফাফ ফুসানেতে আদি হম এফদে মুদলে এউরেন্না হময়ং আয়স এগা এউরেং হিফতে আল্লাহ আমেদু হাক্ক বসবেনুই এউরেন নুবুনুমা ফতুগে কশবর বেগেম্বা আহদু এউরেঙ্গে মচ্চন নুহিপাওয়া হিয়ে আদি এফদুগাওয়া গৈ এউরেং উগেনি দসকুরুয়ে আদি থাকুয়া বেরুয়া মিহুন্ন আখরতুগে গোতি মা হেউ কম্বোডে ফাহে তে বা মিহুন্ন নুই স্নেহিয়ে
1: কীরত কুরআনগে দিবে তরজমায় দেমে মিগেনস্তিনি সূরাতুল আরাফ সতেক 40 পাসওয়ান আয়াতুম ফশায়গিন এ সূরাতুগে সতেক ফাসতুলস নুওয়ান আয়াতুগে নিয়েলা তরজমা বিদাল দেবা ফাওয়ানি ডক্টর মোহাম্মদ হানিফ
2: ইলমি নুরুং হিত্তং আরো কুরুয়া দেদুনিয়েগে বাজ্জবেরিকমা মগু দক্কাদে
3: তুলহেও ফুদুনতেরি উফাবের দিরুলমাকা রাস্তা ফাহি কোত্তে
2: উম্মিদু আকোদ্দি একনিবেরিকং ফিলুয়াদে
3: ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಇಂಗಾ ಸತರ್ಸೆಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
3: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಸಾಬೆಗೆ ಹುರಿಗೆಂ ವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಗೆ ದೆಕ್ಕುಮ ಕಾಣುಲ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಗೆ ಚೆರಲ್ತ ಫೋನು ಅಡುವ ಹಾಲ ಬಲಾಲುಮ ಫಸೇಹ ಗೊತೆ
2: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಏಯ
4: ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡ ದೀನುಗೆ ಅಡು ಅದಿ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ವೆಸ್ ಅಡುವ ಹಾಲವೇನೆ
3: ಟಿವಿಎಂ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಅದಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಲಾಲವೆ
2: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಏರ್
4: ಐಒಎಸ್ ಅದಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ತಕುಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವೇನೆ
3: ಪಿಎಸ್ಎಂ ಏರ್
4: ಅವಹ ಫೋನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರಪ್ಪ
5: ಗಡಿ ಮೆಂದರು ಎಕ್ಕೆಜ್ಜೆ ತಿಬೆ ಫ್ರಂಗ್ ಅಡು ಸುಮತಿಯಾಗೆಂದವಣಿ ದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು

0: तो बारह पांडु है।
1: मावेस पांडु है। एहम मी मादी लहे नुवे तो काटते वस नुके वेन।
2: का का आ नसीब काटते नुके वेनिस ऐका। हंदा कुरात। एका कु मेरे तो भी है ने। माद माय कु नुआने।
3: खालोग कामे रंगुरागे ने ओ मखी।
2: अहरे निधि ओ सिलानी नु इंगे गुरया एरु मशक गिरेवेडे एम्मेन्ना मामी पुने एच्चे एगिचेन्नो का
0: अहरे चिचे अहरे तिपुने रामा आमते
1: देंग एम्मे रंगले अहरे अन्नाना
2: का मेरे रंगुरा आधा कोते पलंग हेला उड़नानी कुल्ले का ग्वालम बिच्चे का गुरया गुरया
1: इवने निया हरिंग हेला वित्तो बलं रीति लंडे देन में हम हिलो में विश्वाकम नह दान
2: का कीफे बा अंगे नुपुनी देम्मे गे हम कुरासी हुनो ए गुरया का
1: ए किहिने तिहे दी निधि कोड़ती के लुवाली
2: का का का का का का का मरा निदा भी जाती होती नुएस निदा कलो होती कलो के मोनो के निधि के आसर बसने का का का का
1: कलो वाह का दक्कना वानी हिंग
2: का अरे वाग दक्का दिए नु मेरे अधि कलो डुए निदा ए हम यागीं कमे का माधुणी देखी कुम वाके कमे बस नेंगे नु कॉक
1: अवह तावह कनु देखी
2: का तिकंग एगुणु कम बस ती नसीबे कॉक
1: देंग अहन नन्नु हेले वेले तिहे अंग तलंगिने रुन्ने ना निदा बला मशकी कालु कोवियस हेले वेच्चे नूने
2: कॉक एम्मे अंगलो कलो एहन तनकन नुदाती कलो नुहेले फिया हरिंगे बुरे का शिवच लगे नमे गेंदा ना आ
1: एहमिया अति मशा मारंगलो एरु मारे नराम का हम उन्नम वेन
2: का एम्मे रंगले देम्मे स्निदाबला अधि आधा अधिरिये एककु इस अधि नुदाने करनेंगे को बामी हार गुरा गुरा दिये तो आहरें ही कुरी रेगा आहरें एवरंग एवाक देखी मा गुरा होन्नान कमा हम आहरें निदायर दिये कमा वाणी कीने दिंग आहरें दायर गुरा गेंदानी अधि आहरें बुरकशमा चलागें गेंदानी ए बुनी मा बुन्ये ए रुम्मा रगले का हराम को उवेने नुंगे किया रंगलु का दिन निदाफिया अहन्न कब्बस मुदवेड़ अवा दाम भी

হুশালাদিনী মিজনা আহমদ কুরিয়ং ওই মুস্তকবলগা আসলু স্ক্রীনকানুলা বেণুং এচ্ছে বালালেবেনকম রিপোর্ট মসেঙ্গিচ্ছে মি ইজাদকি গেম তক কুলে ফারাইতাও গিতুরুং সিহি দায়রাবিস বড়ু ইংগিলা বেগিনান ইজাদকাবানিকম বেলেবে ইজাদু তকা গুলেগতুং ওয়াহকে দক্কায়রু এ গেম মুহিম এং আসাসকি কোবাপা দুনিয়াকে বড়িত গাউমতকুং বিলিয়ন রুফিয়া হরদকক গেন টেকনোলজিগে দায়রাইন কুরিয়ারাদিওমগে ফাহতুগাবা সিড্রকি কোবাপা ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಗುರಹಯಂ ಅಳುಗಡೆ ಮೇ ಮೇದ ದತುರು ಕೊಗ್ಗೆ ಮೊಳಿನಿ ಮಿ ಸುವಾಲ್ ತಕ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಜವಾಬಲ್ಲಿ ಬೇಣ ಕಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮಿದುಕ ಅಳುಗಡೆ ಮೇಗೆ ಮಿ ದತುರು ಕುರಿಯಗ್ಗೆ ನಿಮ ಕುರಿ ಮಿ ದತುರುಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮತಿಂಗ್ ಹದಾಂಗಾ ಕೊಲ್ಲಮ

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते। मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला दो फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबाय वायर बिल नो देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उड़े कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माफ है।
3: टेक के दुनिया के आलोकन में दातुरों को गेंग उड़े रो टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा है। बड़े तो कॉम्फर्ट तक उन गेट नमून दा बदल तक बलानो ला दो कोल्लो मकी खुरम वाने वरुगे खामें नू। मी हफ्ता एंग हास टेक के एम में फाव के खबर तंग अड़ो हाल तिया एहुन तेरी थाईयार तो कुरियंग वती टेक के खबर ता
4: खबर

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबा वायर बिल नो देखी गेंग लारी अ वीनु ये नेंगी गेंग उड़े कर नुचे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माफ है।
0: Tech Talks.
3: टेक्नोलॉजी के बड़े दिखों फोन तक आपदस्थानी आलोगण में दुवही दीरी उन्हें फंसे करो मट्ट का एक ही काल ईजा तक एक ही बदल तक के नमो मादम आलोगण में निदा फहेलायरो टेक्नोलॉजी के दुनिया उफा में फोन नारी कों कहा ला ईजा तक में विस बुना करने गे मिया दो के तथ्यों आलोगण में ना टेक्नोलॉजी या साइंस के गुर हैं एक ही दिमालों तफात ईजाद तक कुंफुनी तक ईजाद तक गेन्ना मुंदा ए तक फंडी बदल तक आलोगण में ना वाणी फेनी आदि अडू एफा नमस मिहार मियादु के दातुरु निम्माला आंबुरा आलोगण में के दुनिये दान दातुरु फशन जेह वागु तो मेवनी जहिफा टेक्नोलॉजी या साइंस के अलीगा इंसान हो दमों अन्ना तफात कुरियरुन तका इंसानी आद कादे टेक्नोलॉजी के सबों अन्ना इंगिला भी आ बदल थोगे मालूमात तका एम एफ होगे खबर तका एको अन्ना अफ्ता गैस हम मिगड़ी के बदल कुरुम का उम्मीद का वकीवेदा हुरिया हूं तेरी बस इंतजार कुरान कम उम्मीद कुरंग वस्सलाम अलैकुम

0: Munifuhi Filvadi, Malumatke Hazana Musalikode, Emme Tubar Kurve Bavaria.
1: Dihira Jeg Adu.
0: Inghas Hatharstek Salis Noe Kilohertz Medium Wave, Adiha Noe Megahertz FM Band.
2: ए प्रोग्राम को गिना मालूम आता के नहुं तेरे ना फोर को दिनों मा दिव्य राज्य गड़ों के निस्तनी अधुके राज्य
3: राज्य के एक ही कंकड़ तो का आमुन्नंग अमास को हिंगा हरक ऐता
4: कलंदर
2: सरकार के एक ही इदारा तो कुंदे खिदमत तंग हो दाने फसे है कोई ता
4: खिदमाई
3: गजट का कानूनी गतन शायर को फावा लियूता
4: आवस खड़ी को
2: आमु दिरियों मुगा कुम्म मीहक बेनु वाने मुहिम्मो मालु मात्ता अदुगे राज्य
3: आदित्य बुरास वच्चा
2: कुम्म दोहे कहें दोनों नुआगटे फने रहें
3: स्टूडियोई वगुतु
5: एवे ने नाला एरिहु ताहम मालेनु कुरा ए उन्दा को दस वर्ष नौकरी